काल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग जय जयवंती महला नवा राम सिमरो यह तेरे काज है माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ सुपने जो धन पछान काहे पर करत मान बारू की पीत जैसे बसदा को राज है नानक जन कहत बात बिनस जह है तेरो गात छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है जय जावंती महला नावा राम भज जन्म सिरात है कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार बिनसत नह लगे बार उरे समगात है रहाओ सगल परम डार देहे गोविंद को नाम लेहे अंत बार संग तेरा यह एक जात है बिखिया बिख ज्यो बिसार प्रभ को जस ही ये तार नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है जय जावंती महला नावा रे मन कौन गत होए है तेरी एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान बिखियन सिंह अत लुभान मत नान फेरी रहाओ मानस को जन्म लीन सिमरन न निमख कीन दारा सुख पयो दीन पगह परी बेरी नानक जन कह पुकार सुपने ज्यो जग पसार सिमरत नहे क्यों मुरार माया जा की चेरी जय जावंती महला नावा बीत जह है जन्म अकाज रे निस दिन सुन कै पुराण समझत न रे अजान काल तो पहुंचियो वान कहां जह पाज रे रहाओ अश्चर जो मान्यो देह सो तो तेरो होए है खेहे क्यों ना हर को नाम लेहे मूर्ख निलाज रे राम भगत ही आन छाड़ दे तै मन को मान नानक जन एह बखान जग में बिराज रे एक ओवंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक संस्कृति महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजस बगल समादंग मुख झूठ बिपूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक लिलाटंग दोय धोती बस्त्र कपाटंग जो जानस ब्रह्मंग कर्मंग सब फोकट निश्चय कर्मंग कौ नानक निहचौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै नेफलंग तस जन्मस जावद ब्रह्म न बिंदते सागरंग संसारस गुर प्रसादी तरह के करण कारण समरथ है कौ नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं जे को जान सपेयो नानक ता को दास है सोई निरंजन देओ एक कृष्णं ता सर्वदेवा देव देवा ता आत्मै आत्मं श्री वास देवस जे कोई जानस पहेव नानक ता को दास है सोई निरंजन देव श्लोक संस्कृति महला पंजवा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुतै कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कुटुंबियते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं करोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लब्ध्यं अचत तनै त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवै
त्रिग स्नेहं बंता बिलास सुतै, त्रिग स्नेहं गृहार्थ कहै, साध संग स्नेह साध संग स्नेह सत्यंग सुखयंग बसंत नानकै, मिथ्यंत देहं खीणंत बलंग बरदंत जरुआ हित्यंत माया, अत्यंत आशा आथित पवनं गनंत स्वासा पहयान धर्मं, पतंत मोह कूप दुर्लभ देहं तत् आश्रयंग नानक, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा, काच कोटंग रचंत दोयंग लेपनंग रक्त चरमणै, नवंत द्वारंग पीत रहतंग बाय रूपंग अस्तंभनै, गोविंद नामंग नय स्मरंत अज्ञानी जानंत अस्थरंग, दुर्लभ देह उदरंत साध शरण नानक, हर हर हर हर हर हरे जपंत, सुभंत तोयंग अच्युत गुणज्ञंग पूर्णंग बहुलो कृपाला, गंभीरंग ऊंचे सर्वज्ञ अपारा प्रत्याप्रंग विश्राम चरणं, अनाथ नाथे नानक शरणं, मिर्गी मिर्गी पेखंत बद्धक परहारेण लखयावदै, अहो जासर खेण गोपाल है, नानक रोमना छेदयाते, बहु जतन करता बलवंत कारी सिवंत सूरा चतुर्दिश है, बिखम थान बसंत ऊंचै न स्मरंत मरणं कदांच, होवंत आज्ञा भगवान पुरख नानक कीती सास्या करखते, शब्दंग रतंग हितंग माया कीर्तन कली कर्म कृतवा, मिटंत तत्रागत परम मोहं भगवान रमणं सर्वत्र थान्यं, दृष्टत्वं अमोघ दर्शनं बसंत साध रसना, हर हर हर हरे नानक प्रयंग जाप जपना, कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत रव सस्यर नक्षत्र गगनं, कटंत बसदा गिरतर से खंडं कटंत ललना सुद प्रात हीतं, कटंत कनक मानक माया स्वरूपं नह कटंत केवल गोपाल अच्युत, अस्रंग नानक साध जान नह बिलंब धर्मं बिलंब पापं, दृढ़ंत नामं तजंत लोभं, शरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं तर्म लखण, नानक जे सो प्रसन्न माधव मृत मोहं अल्प बुद्धियं, प्रचंत बनता विनोद साहं, जोबन बहक्रम कनक कुंडल है, बचित्र मंदर सोभंत बस्त्रा इत्यंत माया व्यापतं, हे अच्युत शरण संत नानक हो भगवान ए नमः, जन्मं ता मरणं हरखं ता सोगं भोगं ता रोगं ऊचं ता नीचं नाना सोमूचं, राजं ता मानं अभमानं ता हीनं, परवर्त मार्गं वर्तन्त विनाशनं, गोविंद भजन साध संगेण अस्थरं, नानक भगवंत भजनासनं, कृपंता हरियं मत तत् ज्ञानं, विकसीद बुद्धा कुशल थानं, बस्यांत रिखियं त्याग मानं, बस्यांत रिखियं त्याग मानं, शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं, अरहंत जन्मं हर दर्शलीना बाजंत नानक शब्द बीणा, कहंत बेदा गुणंत गुणिया सुणंत बाला बहुविध प्रकारा, दृढ़ंत सुविद्या हर हर कृपाला, नाम दान जा चंत नानक दैन हर गुर गोपाला, नह चिंता मात पित प्रात नह चिंता कश लोक कै, नह चिंता बंता सुतमीत प्रवृत माया संबंधन है, दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्व जी प्रतपाल कै, अनित वितं अनित चितं अनित आसा बहुविध प्रकारं, अनित हेतं अहं बंदं परम माया मलनं बेकारं, फिरंत जोन अनेक जठरागन नै सिमरंत मलीन बुद्धियं, हे गोविंद करत माया नानक पत ते उदाहरण साध संग मैं,
ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਰ ਪਤਿਤ ਪਾਤਾਲੰ ਜਲੰਤ ਦੇਹ ਦੀਪ ਬੈ ਸਵੰਤਰੈ ਬਹੰਤਾ ਗਾਹ ਤੋਯੰ ਤਰੰਗੰ ਦੁਖੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ ਜਨਮੰ ਤਾ ਮਰਣੈ ਅਨਕ ਸਾਧਨੰ ਨਾ ਸਿਧਿਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਅਸਥੰਭੰ ਅਸਥੰਭੰ ਅਸਥੰਭੰ ਸਬਦ ਸਾਧ ਸਵਜਨੈ ਘੋਰ ਦੁਖਯੰ ਅਨਕ ਹਤਯੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦਰੰ ਮਹਾ ਬਿਖਿਆਦੰ ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਪਸਮੰ ਕਰੋਤ ਅੰਧਕਾਰ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੰ ਗੁਣ ਰਮੰਤ ਅਗ ਖੰਡਨੈ ਹਰਿਦ ਬਸੰਤ ਪੈ ਪੀਤ ਦੂਤੈ ਕਰਮ ਕਰਤ ਮਹਾ ਨਿਰਮਲੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹੰਤ ਸਰੋਤਾ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਅਮੋਘ ਦਰਸਨੈ ਸਰਨ ਜੋਗੰ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਖੇਮੰ ਕਰੋਤ ਪਾਸ਼ੰ ਕਰੋਤ ਅਗਰਣੀ ਵੈ ਨਿਰਾਸੰ ਆਸ ਪੂਰਨੈ ਨਿਰਤਨ ਭਯੰ ਤਨ ਮੰਤੈ ਰੋਗੀਅੰ ਰੋਗ ਖੰਡਨੈ ਭਗਤਿਅੰ ਭਗਤ ਦਾਨੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਾਰੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿੰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਅਧਰੰ ਧਰੰ ਤਾਰਣੈ ਨਿਰਧਨੰ ਧਨ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰੈ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦੈ ਬਲਹੀਣ ਬਲ ਕੇਸਵੈ ਸਰਭੂ ਦਿਆਲ ਅਚੁਤ ਦੀਨ ਬਾਂਧਵਦਾ ਮੋਦਰੈ ਸਰਬੱਗ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨੈ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਰਨਾਮਯੈ ਘਟ ਘਟ ਬਸੰਤ ਬਾਸਦੇਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੈ ਜਾਚੰਤ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦੰ ਨਹਿ ਬਿਸਰੰਤ ਨਹਿ ਬਿਸਰੰਤ ਨਾਰਾਇਣੈ ਨਹਿ ਸਮਰੱਥੰ ਨਹਿ ਸੇਵਕੰ ਨਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖੋਤਮੰ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਮਰਤੇ ਨਾਮੰ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰੰ ਪਰਣ ਪੋਖਣ ਕਰੰਤ ਜੀਆ ਬਿਸਰਾਮ ਸਾਧਨ ਦੇਵੰਤ ਦਾਨੰ ਸਿਰਜੰਤ ਰਤਨ ਜਨਮ ਚਤਰ ਚੇਤਨੈ ਵਰਤੰਤ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦੈ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਅਨਿਤ ਰਚਨਾ ਨਿਰਮੋਹਤੇ ਦਾਨੰ ਪਰਾਬੂਰਬੇਣ ਪੁਚੰਤੇ ਮਹੀ ਪਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿਅੰ ਮਾਰਤ ਲੋਕੈ ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁਖ ਭੋਗਤੇ ਬਿਰਥਾ ਅਨੁਗ੍ਰੰ ਗੋਬਿੰਦੈ ਜਸ ਸਿਮਰਨ

पीवतंग संतना तृपते, सहनशील संतंग समित्रस दुर्जन, नानक भोजन अनक प्रकारेण, निंदक आवद होए उपतिष्ठते। तिरस्कार नह पवंत मान भंगन, शोभाहीन नह पवंत संसार दुखन, गोविंद नाम जपंत मिल साध संग, नानक से प्राणी सुख बसन, सैना साध समूह सूरा जितंग, सन्नाहम तन्य मरता, आवदे गुण गोविंद रमणंग, ओट गुर शब्द कर चरमण, आरूढ़ ते अश्वरथ नागै, बुजंते प्रमार गै, विचरते नरपयंग सत्र सैना, तायंते गोपाल कीर्तन, जितते विश्व संसार, नानक वस्यंग क्रोध पै तस्कर, मृग तृष्णा गंधर्व नगरंग, द्रुम छाया रच दुर्मत, ततः कुटांब मोह मिथ्या, समरंत नानक राम राम नाम, नच विद्या निदान निगमंग, नच गुणग नाम कीर्तन, नच राग रतन कंठंग, नह चंचल चतर चतर, भाग उद्यम लभद्यंग माया, नानक सा संग खल पंडित, कंठ रमणी राम राम बाला, हस्त ऊच प्रेम तारणी, जीह पणिजो उत्तम सलोक, उदरनंग नैन नंदनी, गुरमंत्र हीन अस जो प्राणी, त्रिगंत जन्म प्रष्टन, कुकरै सूकरै गर्भ दै काकै, सर्पनै तुल खलै, चरणार बिंद भजनंग, हृदयंग नाम तारणै, कीर्तनंग साध संगे नानक, नह दृष्टांत जमदूतन, नच दुर्लभंग धनंग रूपंग, नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन, नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग, नच दुर्लभंग स्वच्छ अंबर, नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रहत बांधव, नच दुर्लभंग बंता बिलास, नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग, नच दुर्लभंग चतर चंचल, दुर्लभंग एक भगवान नाम, नानक लभदंग सा संग कृपा प्रभंग, जत कतै ततै दृष्टंग, स्वर्ग मर्त पयाल लोकै, सर्वत्र रमणंग गोविंद, नानक लेप शेप ना लिपिया ते, बिखिया पयंत अमृतंग, दृष्टा सखा स्वजन, दुखंग पयंत सुखियंग, पै पी पंत निर्भय, थान बिहून विश्राम नामंग, नानक कृपाल हर हर गुरै, सर्वशील ममंगशीलंग, सर्व पावन मम पावन, सर्व कर्तव ममंग कर्ता, नानक

0: तीर्थ हरणं जैन कला मात गर्भ प्रतिपालं नैश जंत जठ रोगण तेन कला अस्थम्भं सरोवरं नानक नैश जंत तरंग तोयण गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरण सर्वत्र जीवन लब्धं संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भगतण मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कै सागरंग लंघंत पिंगं तम प्रगास अंध कै साध संगेण स्मरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे तिलकहीणं जथा विपरा अमरहीणं जथा राजन आवधहीणं जथा सूरा नानक धर्महीणं तथा वैष्णव ना शंखं ना चक्रं ना गदा ना सियामं आश्चर्य रूपं अरहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद बसंत साध हृदयं अचत बुजंत नानक वडभागी उद्यान बसन संसारं संबंधी स्वान स्याल खरै बिखम स्थान मन मोह मदरं महा असाध पंच तस्कर हीत मोह पै परम परमणं अहु फांस दीखण कठन पावक तो असाध कोरं अगम तीर नह लंगन पज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरण कृपा कृपा करंत गोबिंद गोपाल सगले रोग खंडन साध संगेण गुण रमत नानक सरण पूर्ण परमेश्वर श्यामलंग मदर मानुखयं हृदयंग भूम वैरण निवंत होवंत मिथ्या चेतनं स्वंत स्वजन अचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रतेश जंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते हरिचंत पुरख है कुटंब लीला अनित आसा बिख्या बिनोद परमंत परमंत जन्म हार्यो शरण नानक करुणामय हे जहबे हे रसगे मदर प्रिया त्वयं सत हतंग परम बादं अवर्त एथ सुध अक्षरण गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन मतं बलवंत बलात्कारण चरण कमल नह पजंत तरण समान त्रिग जन्मन हे पपील का ग्रष्टे गोविंद सिमरन तोयं धने नानक अनक बार नमो नम तृणंगता मेरंग सहकंता हरियं बूडंगता तरियं ऊनंगता परियं अंधकार कोड़ सूर ओजारंग बिनवंत नानक हर गुर दयारंग ब्राह्मण संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण आत्मरतंग संसार गहं ते नर नानक ने फल पर दर्भ हिरणं बहु विघ्न करणं उचरणं सर्वजी कै लाओ लई तृष्णा अतिपत मन माए कर्म करत सासु करै मते समेव चरणं उदरणं पै दुत्तर अनेक पातक हरणं नानक साध संगम ना संशय वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सर्व सांझी गुरबाणी प्रोग्राम दे स्पॉन्सर हन टॉप लिंक लोन एंड लीजिंग। तुहाडा ट्रक ट्रेलर दा लोन कितों नहीं हो रहा जां तुसी यूज्ड ट्रक खरीदने हन ते सानू कॉल करो 204-480-9600 जां ऑनलाइन विजिट करो toplinkfinancial.com।